को इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराएं, देखो वो गोरी गोरी राएं, हमको इशारों से बुलाएं।

अपनी ही आतिश निगाह से पूछो, आवाज से पूछो, फिजा से पूछो, तुम अपनी ही आतिश निगाह से पूछो।

में किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इन